ताबीरे ओयनाम इवेनी सिंगने शकपा थौनाव जम स्यामोना सैरेंगबा मतमिशे मतमिशे की खुदोलदा हाउजिगम बुकला वीरसी थोकचो मेमदोन देवीना सकपा अधिकारी मयुम रामेश्वर शर्मना सैरेंगबा नंगतना अइबो वहली हैन सहुबा इशेयमा खुदोलदम जरी

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजी एयू की पुंग तरह मखाई तारी मणिपुरी पाव ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल निंथौखोंजम सुनीना पाव पाजरी अहानबद मरोइबा पाव मुख्यमंत्री ने हायरी पीएम सवानिधि स्कीम मई क्या की हिंगनबगी लंबी चावन मतें पांगले सिक्योरिटी फोर्स ने थीबोम की थबक चथबद लालहौब अहम ड्रग ललोन मई अनी फारे भारत थाव चान थकनब पोलम हार अत तंगाई फदब पोलम वातन फंगनगनी सरकार ने हायरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसा पीएम सवानिधि सही तरुक मपुंग फारकपद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थागत फोंदोखरे सोशल मीडिया थागत वारोल प्रधानमंत्री की मिदेंग मखा स्ट्रीट वेंडर सिंगी याइफनब पाइखलिब थौरांग लैबागासिगी साखोटपगी लंबी अमत्तु ओइन चतमिन्नदुना मांगजिल थाबा ङमले कोविड 19 मतमद हौदोकिब पीएम सवानिधि स्ट्रीट वेंडर मियोय कयाद सेलगी तेंबांग फंगनदुना अनौब मायोनमद पुरकप ङमखे स्कीम असिना मियोय क्या की हिंगनबगी लंबी चावन मतें ओइदुना सेल तुमगी फिवम फगत हली मसिमक

आकाश पानी इम्फाल हौजेक नोट की खुदोल्दा निंथौजम केशो सिंह सकपनोद राधा अनुराग ताबिरेशी।

ताबिरै निंथौजम केशव सिंह ने सकपनो राधा अनुराग आकाशवाणी इम्फाल हौजिक ताबिरसी थांगजम सनाहल सिंह ने खोंबा क्लानेट।

0: Taviri Thangjam Sanahal Singh na Khongba Klane. Adom na thaurum Taviri basi Akashvani Imphal gi Kangla channel dagini. Akashvani Imphal gi music section gi bi dagina bi hai kanaba gi music audition lakliba jun gi tangni pandagi haujeragani admit card lawikraba candidate singna isai sagi audition numit sing Akashvani Imphal gi notice board gi yengbiram naba ningsing jeri. Akashvani Imphal hauzik ayuki pungni pantare Delhi dagi rileda Samachar Prabhat Morning News amadi Shillong dagi rileda North East News mathang mathang oina taba phangbiragani.
1: पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: Both sides underscored the importance.
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
6: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
7: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
8: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
6: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
9: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस

0: 500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउन क्लाइन सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ou Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
7: Both sides underscored the importance

0: मैडम सीधे लोशन दे
1: थागत चरी ना उसा अजीक सही शक्ति देगे मुक्तामी नरसी इंगाले फिल्म देगी बीजेंट कुमार शर्मना सेरेंगवा खुंजो कुमारना सेरंग विषय खुदोल तम चरी।

0: हेलो,
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग तराम नोकचरी
1: मैं हैंगान लगी थबा कर तुम कोई में
0: थबा करम बफ मिशे ताबी गने
1: मैम आ कन माने इखें मटेरियल रो था फिल्म देगी ने
0: होय
1: अदानंद का रोशि बिना कना सपता की करे ना पाओ जो दुई ताकी
0: होय यम फजबे इशे ने ताकि दरे न पाव सदानंद मदि रोशी बिना नि पुन सबिना बा बी जेंट कुमार सर मने सेरेंग बा तोम थांग जमने सरांग विशे
1: हाँ ये खुन मेम भी खुन जाएंगे वो जाम नेम में
0: ओ इन दी अम न फजना दम ताजे होय नेटवर्क न अ प्रॉब्लम वरम बशी आई हाई गांग दे दे आ खोई की थोरम से तुम ताबी ब्रा कना मोबाइल द ताबी रिरा न ट्रगा खोई की रेडियो द ताबी ब्रा कमाइन ताबी
1: आई मुझे फोन मोबाइल द फोन दो ना तारे लैपटॉप
0: मोबाइल दो इन ताबी रे मोबाइल तार से कना रेडियो द ताब में एक छिंग द
1: दो
0: बगीरा
1: ताब या या जो रिडो दो ना ꯁꯉꯥꯏ ꯊꯥꯒꯤ ꯕꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯕꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ
0: ꯑꯣ
1: ꯁꯉꯥꯏꯗꯒꯤ
0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ
1: ꯄꯤꯛꯑꯦ
0: ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ
1: ꯑꯅꯤꯃꯛ
0: ꯑꯃ
1: ꯃꯥꯗ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯎꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯂꯥꯛꯇ ꯃꯈꯣꯟ ꯊꯣꯛꯎꯗꯕ ꯂꯥꯛꯇ ꯃꯈꯣꯟ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ
0: ꯑꯗꯣ
1: ꯑꯩ
0: ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ
1: ꯊꯕꯥ
0: ꯅꯦꯠꯋꯥꯛ
1: ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯅꯪ
0: ꯊꯕꯥ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯊꯣ
1: ꯃꯦꯝ ꯆꯥꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯦꯝ ꯆꯥꯛꯇꯤ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯩꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯁꯛꯄꯤꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯊꯕꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯄꯥꯝꯖꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯅꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇꯪ
1: ꯃꯦꯝ ꯆꯥꯈꯤꯗꯔꯦ ꯅꯥ ꯄꯥꯎ ꯎꯝꯕꯅ ꯈꯣꯏꯔꯥꯡ ꯍꯜꯂꯦ ꯃꯦꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯁꯤꯗ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

0: हेलो,
1: हेलो हेलो
0: तराम लोक चुरी
1: हेलो गुड मॉर्निंग हेलो मैम हेलो
0: गुड मॉर्निंग तराम लोक चुरी
1: श्याम
0: हाय श्याम राम
1: राम
0: ना ते रेडियो तो कितना लेट भी आ गया
1: मैम फोन दे दी ता दे अदन रेडियो मरा तो चंगे रे दी याद रे रेडियो मरा तो चंगे लगे ना मु इको तो दोई ने
0: अदो रेडियो से तो कितना लेट भी रगा वारी से हाना तंग छाना भी ना
1: फिल्म हमोई की मखोल फिल्म देखी ना
0: होय
1: उमानंदग पुष्पारानी के न थकप हन हंजिन हंजिन क्या रख लिए न थे उबदो श्याम राजेंद्र लुआंग थे रिंग बा नव जितेन कुमार नौरेन न हैरांग बदो अजु ताजे के
0: याम फजना इसे इसे खन भी रख ली अदोगा सेरिंग बा सरांग बसु वही एक चीना कोई रेडियो था वो चीना ताबी बनी थी हम राम जे कोई न हंजन हंजन न तुम्हाक ताजे रे अदो इसे इसे याम पाम जो खन भी रख ली था वो की मकोल फिल्म देगी पुष्परानी एम दी उमानंदा निपुण सक्मी न बात याम राजेंद्र लुआंग ना सेरिंग बा जितिन कुमार नावरे में सेरांग बसे हजिक से राम जे कई तो बिरमीन
1: चुम रेडियो ताजे रम बनी मैम अतई छबक कशु रेडियो के ने अनिमत नकल अनि खोंगे अदम पादरी
0: रेडियो
1: अनि खोंगे एफ नेसना थारक बा तो इन तोई पाइखत पलो खप पसिंग ना थारक पसे अदम पादरी अदुगा खोजी लाइफ फोनिंग ने खरा नुवाई जन थवाई हकाउना
0: लाइफ फोनिंग प्रोग्राम हजी तसेंग थमोई कनाना गोल तौर इगेसी लोटपसु यारोय नत्र राम हाइजरीबको कनाना थमोई खनबिरगे दै छैसे मते मतम खुदोल तंबिरम बयाबरा
1: ऐसा ही नंबर दूं तीन आप ही करने ऐसा ही नंबर दूं मुझे ऐ नामुं था ताबा देखी थी इनाम दी चोबु तो मायने तो
0: ऐसा ही दी पाम ना ताज़ा बा
1: ऐसा ही दी पाम ना दी तो ताज़े ही है कंगाई कंगा अनि मक्षे ऐ थोड़ा खुदी मक्षे
0: खनबी रखली खुदोल तमजरी मैम पुनः तमिन।

0: हेलो,
1: हेलो
0: लाइव
1: हेलो
0: फोनिंग प्रोग्राम दादू मुतारा मोक्चरी
1: आई फोटो गैलरी का चंदम संतोष की बेबी
0: बेबी है बा
1: होए
0: चनम संद्रोक तगी बेबी बेबी करम फिल्म से दाबी गने
1: वो कहलोगी सही हाय छोटी हेलो बेटी फिल्म देखी में सॉरी ताजा जमीन तो पर आई की पुण्य में है वो था फन जे खंग रे तो वही थी तो
0: रोसी बिना मदी सरिता अनिपुन सकमिन बक इसे राजेन यंग कोपम न सेरेंग बा कोको बिना सेरंग बि इसे इसे से आम पाम न जुस खन बि रखले हजिक से बिबि के कई तो बि रमिनो चक चा बि रब रोसी सो
1: डेली दियो दे गेम ता अब फोन दे गी ता अब छ गेने
0: हाय
1: खर खेलना ब ताम ताम ना वो बने ने ता ब वाट प
0: रेडियो द ताब से नकरम बथोर करम ब चैनल ताब ताबी बगे सिक्स सनम
1: नसी
0: संरूप
1: बोली ये कनो द कमला रूम द तारे बा से कनो तो बगा अब तो फोन जी हम तब पहाई तारे फोन दिन आगे पची
0: होय
1: आपन खंग द बा
0: फोन द ताब से नुवाई ते हज हज गवारी सने बजे द नुवाई ट्रीरा नत्रगा
1: ना तो मखून खंजी नहीं खाया तब की बा
0: हजिक ती नुवाई बिरोबरा हेलो
1: हेलो
0: बेबी इसे इसे खुदोल तम जब यार अदरा इसे इसे अहो
1: अवधुन कंतम भीरो या नहीं आपको ना तानी ना चल के
0: हो बेबी इसे मतियम तंग खुदोल तम बिरम मुदना मैं आम सुलोई नमंग असी दी इसे लोई शक बिरम मैं याम बना सी की ममांग दे तो बिरम बोझा
1: कंतम भीरो
0: राम
1: ये
0: नतन
1: कुचुंग कतरा दिखांग दे आई की पुं आई की वाखन वो था फम बुखं दरी मुंशी इथर खोले
0: थागचरी सही शक्ति दिगे मुक मैं अपुन तामिन रसी

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग तरा नोक जरी
1: संगीता
0: संगीता करम बफ मिशे ता भी गनी
1: पुष्पा
0: ओलांग था गी करी फिल्म हजकी फिल्म तो करे है भी बा जपालान द इम्फाल गे नु फिल्म अखोई गी थोरम जे होबो देगी ताबिरम ब्रा आ अखोई गी थोरम से दम होबो देगी ताबिरम ब्रा संगीता ओ यम नुंगाई जे अदो ओलांग था गी लेबाक लाइ गु वान खांग ले नुशी मे चागे यम न यम छे मे येक जे यम थमोई काई बम खन बिरे द गंता ना
1: छागल पदे सुनता जे निंग तो निमे दा
0: ओ ओलांग विशा जी ना छाला नि ना ओ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ? ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ? ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃ ꯆꯔꯟꯅ ꯁꯦꯔꯦꯡꯕ ꯏꯕꯨꯝꯆꯥ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯆꯔꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

ताबिरे नोंथोंबम मंगिजाउ सिंने सखबा मतमिशेनी मथंग मथंग ओइना मतमिशेगी खुदोलदा अहुमशुबो ओइना माइबम रेनुका देवीना सखबा मयांगलांगबम सुमतीना सैरेंगबा पुंसी पामेल ओइना नुंसी वहाइना सेहोबा मतमिशेमा खुदोल तमजरी तामिनारसी

ताबिरे सैसक्पी माइबम रेणुका देवी न सकपा मतमिशेनी मथंग मथंग होइना इसेसी तहन जखिबु लोइनना मतांगासिदा तांकक सिकिबनदि मतमिशे संदोपा लोशिनजरी

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल,
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी,
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
3: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
2: जी,
3: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
2: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
3: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
2: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं, कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
3: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
2: जी,
3: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
2: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
3: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
2: जी।
3: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
2: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि
3: जी।
2: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
3: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
2: जी,
3: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
2: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
2: जी।
3: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
2: बिल्कुल।
3: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
2: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
3: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
2: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
4: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
5: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
4: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।

0: Comment
1: ça? Vous
2: de Marseille, dans le sud de la France.
3: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया, भागो।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो
8: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है,
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया ये।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
2: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
3: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण

0: रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज,
3: ए, ए, हाँ
2: इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर

0: थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: एनसीईआरटी की तेंबांगलोई ने संदोक सब थवरम उमंग ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल अहोजिक मू संदोक सरी साइंस मैगजीन थौरम लांथोकली संगीता नामैराकम अईबा निंथौजम श्याम किशोर थौरम सिबु पुथोकपा रायचंद चिंगथाम।
7: लांथोकचरी साइंस मैगजीन ngasigi thawramda thamjari dark matter amasung dark energy gi ithil amadi matau karamna electric vehicle na kanaba pi haiba hiram sida CSIR Indian Institute of Petroleum Dehradun da senior principal scientist F oina thau puriba Dr. Lairen Lakpam Robindro ga ekhogi mihut Raichandra Chingtham ga unodun wari sa

श्री सदा शिव नहाय ताउ प्रिय पार्वती दुर्गा अनक शतकांड अनागत्ता आय दिना रघुनाथ राम चंद्र सानरि वलीला सोस्ति हजार वर्षो सहेली सिंह हुंभू राम अवतार वे गवा सहेली सिंह हुंभू वालिंग की ममांग तुरक्त की वाल्मीकि मुनि देवन लेंथोक्त न थनंबा अशुगुंबा खुरजई की लिखलम काय वलैतना रघुनाथ राम चंद्रन सान बिरी दो प्रिय पार्वती दुर्गा अशुगुंबा अमृत रोष पुण मंग संघो न तिल्लवा पद पद खुदिंग दुरक्ता रघुनाथ राम चंद्र की नम अमृतना अभिषेक वैवा अशुगुम राम लीला राम चरित्र शिव प्रिय सर्वोल्लोर पद एक शितमोन पुंगनी लोंग बलैतन सरदा भक्ति के लोइन ताजर पदा मचा लैत बसिंग मसा पिन बिबंगम ग्रब लल लैत बसिंग लन पिन बिबल लैख रब अब मृत्यु की अवाब पुनम कोहन बिबंगम बा पाप पुनम को को बिबंगम बा रघुनाथ राम चंद्र की चरित्र निदो पार्वती वरितारी भी हिमरगिरी नंदिनी दुर्गान करिकृतांजलि खुटनी जुर वोय खुरगुदक लैता जा पागर वैन भीद न कोक थक्त लैते वोय जदना मबुओगी अग्र मांग भक्ति के लुइन रग हंक चरही प्रभु तारु बगी पेन मलै घिदरावा ठगलु बगी मयाई संब को बलै घिदरावा पद पद खुदिंग दुरक्त अमृत न भांग वोय न सिंधर रिवा अइमो रघुनाथ राम चंद्र के लीला ऐबू रघुनाथ राम चंद्र की चरित्र ताजर बजगी ममद्दी हे ऐगी दिहे दल रंब ब्रह्मत्याग पापु नमक सिंह दो नोम नोम गी कोक्षरे ममी सामे तरे सुबो तरकांड की मनु मधुरक दैबू न मथंग मनाओ काई बलैतना मथंग मथंग सुमकली भी रख बना तरे सुबा कांडा उद्दर कांड की हिंसावा कर्म न पोखिबगी हवस्य की मतांगा अइबुंग नमुक मखा सथवियु नानाई तारुबगी पेन मकोबले घिदरे थ उबगी मयाई सम मकोबले घिदरे प्रभु नानाई तानिंग मन लांग तक नरे आई जना मबो महादेव के गड़द हंगट सवत श्री महादेव न तारो भगवती दुर्गा जगदशी श्री नारायण की कृपाण मथंग मथंग सुमत अवतार लांद्र लाक मसीना ममा लखा मरिफुग मरी की मचा लखा मरिफुग मरी आई देना कनागी जीव अमत सिद्ध बलैतना मधुरक्त ब्रह्मान सृष्टि होना लाक मसी की कांगलम लिखलम कायब याद देन ब्रह्मान मयाम जीव पुनमक सिंह मनुंग दुरक्त लोइन सेम दन मी वोइब पुनमक सेम दन चलो मरत लोकता नखोई जीव पुनमक की मकोक वोइदना जीव पुनमक कुन घोइन पालवन तौदना जगत सिगी मनुंग दा धर्मा अब धर्म सिगी दरी गी वांग मद

0: ꯄꯂꯦꯝ ꯄꯟꯊꯧꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤꯅ ꯑꯍꯜꯅꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯤ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤꯅ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤꯉꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯖꯥ ꯏꯕꯦꯝꯃꯒ ꯃꯇꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯃ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯜꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯆꯪꯕ ꯐꯪꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯃ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯏ꯫ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤ ꯃꯨꯁꯤꯡ ꯀꯕꯨꯏꯒ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯈꯤ꯫ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯟ ꯍꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯄꯣꯏꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ, ꯏꯝꯐꯥꯜꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤꯒ ꯇꯠꯇꯅ ꯎꯅꯩ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯋꯥꯌꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯐꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1949ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯥꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯃꯦꯟ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯡ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯏꯅꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯡꯄꯥ ꯐꯧ ꯆꯦꯡ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯋꯥꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯌꯧꯈꯤꯗꯅꯕ ꯂꯝꯂꯣꯡꯗ ꯊꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯏꯪ 1990 ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16ꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯁꯎꯟꯕꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯁꯨꯜꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗ ꯃꯥꯁꯨꯜ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯨꯜ ꯁꯪꯗ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯣꯏꯗꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯃꯜ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯇꯥꯛꯂꯦ, ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯥꯒꯣꯟꯅꯖꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯏꯍꯧꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ꯫ ꯏꯃꯥ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤ ꯏꯪ 1989 ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯆꯤꯗꯥꯏꯗ ꯏꯔꯤꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤ ꯚꯥꯕꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯄꯤꯛꯇꯛꯄ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯁꯦꯛ ꯃꯉꯥꯜ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯕꯨꯏꯅꯤ ꯑꯄꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯦꯂꯦꯗ ꯗꯣ ꯄꯥꯍꯦꯔ ꯁꯃꯥꯆꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम एप 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज पर फौजी भाइयों का कार्यक्रम अब आरंभ होता है। फौजी भाइयों, आपकी सेवा में प्रस्तुत।

प्रस्तुत है महफिल जो आधारित है गज़ल पर। पहला गज़ल प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज़ में। गज़लकार है कातिल शिफाई और संगीत जगजीत सिंह का।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में एक गज़ल। गज़लकार है मुजफ्फर वर्से और संगीत जगजीत सिंह का। फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के कांगड़ा चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम महफिल। अब सुनते हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ों में एक गज़ल। गज़लकार है सबा अफगानी और संगीत जगजीत सिंह का।

0: बेकार है रे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही 2015 ली लोन्स कसान गले ही ना शिनाव मिलेन मिलेन ली कोलेडर फ्री लोन्स कजा आठुमी कले मकले जे न मयंग ला लोन क्वीन सकल का बिजनेस सांग सका स्कीम हुई आजिंगली लुबा ग्रोल ला खंगमती लांग द बेनिफिशियरी बिंगली आजगुम मार्च ली गायशोक मी कहाय जुई नजाइली लुबा ग्रो लाख थ्रादशी ने शिनाव बिंग ली खमीना फ्लैगशिप स्कीम बिंग जी प्रधानमंत्री जन धन योजना सुकन्या समृद्धि योजना गल विमनिया इनिशिएटिव ना शिनाव बिंग वी बैंकिंग सेविंग्स गल एंटरप्रेनर्स प्लेटफॉर्म बिंग मथा संग सखाई रे जन धन योजना वी आजिंगली अकाउंट ग्रो हंगपंगा तिशेट लांगदली आज राशुंगदुई आलोंगली शोमिंग सखाई रेगले हुई नजाइली चानथान अकाउंट ग्रो थुमरा दकथुम न शिनाउबिंग विना खंगदे लाखपति टीटी प्रोग्राम ली शिनाउबिंग न सिंकुम खली लाख आखा इनकम उंजंग सग पेदी बचाओ पेदी बदाओ स्कीम हिना आंगांग नाउ शिनाउ कप्रावी मी मशीन 2014-15 ली शाजिगो थ्राद जिशत लेग सावे न 2022-25 ली शाजिगो मुगुद जिगो मदाई गहाई र हां गहाई मखोक मी गहाई प्रोग्राम बिंग हिवी मंगाई न आर शिनाव बिंग न क्लद वी खंगरीन लेशब खवाई ओत गसाली मदाई लाग गहाई ओत मुरुद खुईदलाई नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वी हंग शिनी द गथम गाग शुंग अ प्लेनरी सेशन राखरा थर्सडे थंगहोन मेघालया वी कैपिटल शिलोंग ले खिका कि दले कल रीजनल प्लानिंग वी चेयरमैन सादक ले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नक चिपली थान मिकी कि जिथात ले दले यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड कम्युनिकेशंस एनईसी वी वाइस चेयरमैन ज्योति आदित्य सिंधिया Chile langmai da North Eastern State Jishat ka tongawi Chief Minister Bing kala Governor Mi Bing Governor Bing meeting hili razangi dilai itum na thai pai ga je 72nd NEC plenary ga sip hi Tripura li December 2024 li pam ga haina aju bau hinuk pai ra pau bing hi Agashvani Imphal wei na jiho kamina ara itum na hunna ga प्राइम मिनिस्टर नगजांग गजी द आवी उकलुंगुई दुई मदुई खमी मन की बात इशुई आकाशवाणी हार्वेस्ट रिफुंग न खल लग मदुई खमी हुनक ननांग रमस
1: इंडिया वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न आवी उकलुंग चनपाव मन की बात अखुम साख थुमरा दी काकसुंग इंडिया उचुम नो सकुरली आया मे तारीख थुमरा दा कथंग हंगजपुन इमरम थुन हार्वेस्ट रिपोंग खरा चौल पाली लेगे इचुम नाउ बिंग नमस्कार मन की बात उ मंगा नुम सैकुरली नुरी संग फंग वांग्री फाक चुंग फोसोक्त लेव गई तेकम ते ओ आयुर जा जात गले हिवी कना खवाई विवांग सेमशोक दले गल हिकता ओचखी मी कचुंग खली निंगली खमतुक खुरामी दले अथमले अपोंग चुंग खैन निंगश मी दले आचरे मे कपते इन चरकान हुइरान चिली नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन रेव खाई चिली पन लग खरचान संगाई दले इंडिया वे अपम गते गते द वेना मिशाज शतलांग दने हिवी कंपटीशन हिली शुरू खुइदा रेदवि नेशनल रिकॉर्ड्स मति साखाई है रिकॉर्ड साखा गहाय अथुबिंग जिया गुरिंदर वीर सिंह विशाल टी के तेजस्वन शंकर देव मीना कला कुलदीप कुमार अथुबिंग हि कैटेगोरी रिकॉर्ड साखाई गहाय अथुबिंग हिली रिलाकन इलाम तु हंगुंद लेगे रिचम नाउबिंग इंडिया वे अपम चुम खुम आरोन हि चिंगेट कसा अतम चिंगम कसा मसी कसा हिगता हि येंग इथुम गवर्नमेंट वी डिपार्टमेंट तेन कसा हुई आईना घा खवाई हंगम तीन चीना तर कचुंग मंगलो कल चिंगम कसा लिम जत पालो

0: तो सेन बहाओ रे तो
1: चेल ले तो
0: हाय हाय तूने टाइन है इंग सेन बहाओ रे तो
1: चेल ले तो
2: ये मां
0: समय तो है
1: हाय ये उन है नंग बो इस ना सागी सिंग मा यान दो लोइन तब न तब न मा के मि नंग बो
2: तू ने दम सा इरम न ला मति चान बु
1: लेरबदी
2: लंबी सु थुमजिल लरो सुमांग सु कंग ले
1: नी
2: अदुगा युम लो न बग सु खना
1: न लो लरो
3: सोलूशन इंटरनेट सब थीरुबदने चौखले कंट्री से चाइना जापान मखोदी इरम लासे फ्रे जपान खोबान फाउबरमेने पाबो इसिंगद लंत्रिक लंत्रिक लंगी खोबान इसिंग मचुगासे मुसिन मुसिन मूरदना उदब तुकचे मनमन मरोल नमथीरीबा पाबो इरम नला मतिक चान फजन लेतबा लम खोबसिनबगी वाखलोंदा तुंगी खंथदना युम हेक्ता साजिनबा फेंसिंग एकता खाजिनबा सिना इरम नला से लोइन फुंजिन लकबा पिक्सल लकबदगी इसिंग चेनफम लेतदुना नोंगी तंगशुद लोइन पाथोकदुना थुमलिबनिने पाबो अदुगिसु मथकता पाक सन्ना हौजरमबो उमंगसिंग लोइन कोकथोकबासिना नोंथकतगी तारकप नोंसिंग फाजिनब सुबसिनब लेतबदगी इसिंगसिंग असे लोइन सेंथरकतुना चिंग निंखाइबा तुरेन पाथोकपन चिंगब कयासे थौलुलिबनि अदुन खोइन सिंगसिंगबु संगना उपाल वपाल कया हवनदुन थंब मथौताय अदुगा शिवदसु पुवे यारारोइदब लंबु खोपसिनबगी वाखलोलसे थाथोकप फैने पाबों मशिनी अइन इंटरनेट थीबदगी थेंगरकलिबा
0: आ दुदी मयाम एखोइगी लेकाइगी ओइनदी ngasidagi lam khopchin ba chi thadolo siko nala matik chana thammasi amo ra kai mapham chana sana thammasi aige aige ai ba thadolo siko
1: thokada bani
0: ema dashumati
1: dada
0: sinungai tro
1: is dada sidigi henungai ba leitre dada leitre
0: dashumati
1: dada
0: si yorde nong na phodit phuna churopchu ibungni yare
1: sinungai
0: re ऐ बे मथोई बे
2: मामा
0: नंग माथंग जु भोट काउको ए अखोइने यारी नंग
1: आया या
2: मामा
0: आउने
2: नोंग हेक्ता बगा लंबी सोरोक सुमांग दि थुमलरोय हाय बबु मथक त गितारक ब नोंग दि अइना सुनते मामा न सुनते इंदोम साना सुनते अदुदी
0: लाइन तारे दना।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी इम्फाल हौसी नुमिदांग इपुंग तरेर मखाई तारे मणिपुरी तो पाउ तबीरसी।
4: आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी आहान बद मरु ओइब पाउ। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुफमुंग चनी लेब हॉस्पिटल के थाक तसंगत नब गृह मंत्री गोविंद दास कोंथोक जोम नंगासी हॉस्पिटल असिद चतुने यंगसिंखरे राज्य सरकार ने लिसिंग मचमा पर निफु तरेटे की फोंग लखिबा गेजे सिंगे डिजिटाइज तौरबा कॉपी सिंग ऑनलाइन द मियाम ने येंग बा यारगनी। फॉरेस्ट विभाग ने हाइरी नोमाइजिंग रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया द अयाब याउ न चिंकाब मदि केम न चिंगबा थब सिंग चथब यारोय। नेशनल पंचायत अवार्ड लिसिंग अनि कुन मंगा हायंग न्यू दिल्ली द यंथोक लगनी। लेबा सिगी मथौ निथि न पांगतोप पंचायत निफु निथोय द मनासी कुसिन लगनी। अमसुंग हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मरी अमसुंग सीनियर एडवोकेट अमंगसी सुप्रीम कोर्ट की जज ओइन वसक लौख्रे। बिष्णुपुर जिला के फमुंग यांखे लेब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिबु मतंग चुनाब फबुंग चनी लेब हॉस्पिटल अमसेंगत नबगी मतंग दा गृहमंत्री गोविंद दास कोंथोक जमनांगासी हॉस्पिटल असिद चतुने यंगसिनख्रे। कोंचेत अदुद बिष्णुपुर जिला के डिप्यूटी कमिश्नर पूजा एलांगबम अमसुंग अतोप विभाग कयागी ऑफिसल सिंग सुलुइनखे। मंत्री ने यंगसिनब अदुद नोंगनो सेंगत कदरिब हॉस्पिटल असिगी मथौ ताब बिल्डिंग अमदी अतोप हक्सेल गे पोलम सिंगी मतंग दा ऑफिसल सिंग ना मंत्री दा पाउदोंखे। मंत्री की मैके की हॉस्पिटल हेन फगतना मिपुम खुद अना लाइन की खुदचाब निथी फंगंगनी थाजब थी लोन मंत्री नौन हॉस्पिटल सेंगकदरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिला मेडिकल कॉलेज वाखलों युम पाइकदबी मरमुना मरी लेना ऑफिशियल थब पाइकपद पुचल सेंम की खन कथोप लोन मपूफा पाइकपीनब मंत्री अपील तौर। मुख्यमंत्री युमनांग खेमचा सभापति मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की तेरासुब एजुकेटिव बोर्ड की मिफम मुख्यमंत्री की सेक्रेटरी पांथोख्रे। मिफम मणिपुरी सिनेमा चखोधनब आर्टिस्ट फिल्म मेकर सिंह फिवम फगतनब खनखे। मिफम बोर्ड असिगे मेंबर उरंब लेखिजब के एस कुलेश्वर सिंह की मफम अवाब फोंदोखे। अमरोमद मुख्यमंत्री युमनांग खेमचा सभापति मणिपुर स्टेट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के तरसुब गवर्निंग बोर्डी की मिफम की सेक्रेटरी पांथोख्रे। मिफम टेलीविजन एजुकेशन मगुन लेब फिल्म पुथोनब होनब चंब इंफ्रास्ट्रक्चर सेगप कम खनखे। इंस्टीट्यूट असन मणिपुरी फिल्म मीडिया सेक्टर कुम चौसनब होनबद हईथोर आर्टिस्ट पुथोप अचौब थी सरकार ने मणिपुर फिल्म चखोधनब होनब पांगे पीगनी मुख्यमंत्री सोशल मीडिया फोंदोरक्ले। दूरदर्शन केंद्र इम्फाल की ऑफिशियल टीम नंगसी मुख्यमंत्री युमनांग खेमचा सेक्रेटरी उन्न वरी सानख्रे। मिफम राज्य सरकार की लोन मणिपुर की इना खुल फिसा लोनसा की थब हेन मालम सकता पांडम ब्यूटी पीजें पांथोनब खनखे। जॉइंट ट्राइबल काउंसिल जलरंग पुई एरिया दंगरांगदिगे चथरकिब टोटल इमरजेंसी सट डाउन असिदिगे हंदोकले हाइना काउंसिल असिन चरोट अमद फोंदोरक्ले। निमित मंगानि चखता वेब स्वास गाउन सुरक्षा जलवायु कैंपेन असि चांदल जिला द हगदोखरे। सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमदि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन गि हिरम द पांगतोप थोरम अदुद जिला असिगे मकोक थोंब ऑफिसियल सिंग अमदि खुलाक पसिंग न सरु याखि। महाबली इंटेक की ट्रांसफॉर्मर सेमजन साजनगदब लेबना निंगटेमपुक्री वाटर ट्रीटमेंट प्लान इसिंग पीरंब मफम सिंग मतं खरे की ओइना इसिंग पीब गमकिरो हाइना पीएचईडी मणिपुर की वाटर सप्लाई मेंटेनेंस डिवीजन 2 की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना खंगलकली। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इम्फाल सेंटर ने हाइरी राज्य असिगे मफम अयांबद लाकतरिब नुमिनी हुमनी असिद अखा अराव याउना नोंग चुरब याय। पाउगी मरक थना अतेनब ब्रेक अमा।
5: Nupida amadi nupasing da toina naganba thyroid ki anaba makhal suna yengbaga loinana Manipur da ahanba thyroid scan gi facility leiraba AOI Babina Speciality Hospital thyroid cancer gi high dose iodine therapy gi khudong chaba pibaga loinana CMHT PMJAY health card amasung government employee sing gi su khudong chaba pizari Dr. Singhna tumor board phamduna anaba sing gi layengda chauna mating pangli Akupamarogi Damag, NABH Panglaba AOI Babina Speciality Hospital, Sajiva Jail Road, Khabaisoi, Imphal East, Tanabiu.
4: Tabi Riba Pawasi, Akashvani, Imphal Degini. Rajiki Director of Printing and Stationery na Raja Sarkar ne lising machama pani futarete gi phong lakhiba tungan tungan bagese singe digitized sarba copy sing online da miyamna yengba yargani. Lising macam apa ni futerite gilising ani kun power the phone kiba sing digitized toroba gazette copy sing website egazette.mn.gov.in da panglagani lising ani kun mathoide gi mamang chehigi July kuntra mathoi power the phone kiba gazette singi digitized copy na website manipur government press.nic.in da panglagani bibhag asigi director NG Robin thokpa cherol amada hai gazette copy khara di director asina Pangdabana maram oiraga website thagat pangamdri pangdriba gazette sing ase tinana ba amadi digitized tongna ba director asina marini na ba bibhag sing amadi kendra sarkar degi copy sing laruna ba kan honari mangna makhatan hai marini na ba gazette sing thiba pangdriba su bibhag sing na matamatangi thoki ba marini na ba notification sing gi copy di fangi ase gumba phibam ase da director asina gazette sing miyangi khudung channel ban nauna sangat na ba honari nauna sangala ba gazette sing gi cherol ase gi thab Matak Tang Basarukta reconstructed Gazette Haina Thagani, Nauna Gazette Sendokadoriba Asida Kanagumba, Yaningda Banatraga Mod Fungdongba, Lera Badi Director Asida Tasigi, Mari Fabugimanungda Aibi Cherol Pislak Bayagani Hairi. Nomizing Reserve Forest ki area de Ayaba Yogna Chinkaba Madikam na Chingba Tabak Sung Chetha Bayaru Haina Raisigi Forest Bibaki Central Forest Division Nakangan Lakli, Divisional Forest Officer Bibek Shures, Nadina Thokpa Cherol Amanahai, Nomizing Reserve Forest ki area de Myoi Karana, Ain Kaina, Changsing Duna Chinkaba Madikem na Chingba Chathaba Gitaba Hengan Lakli, Ashikumba Thong Singh Asi Indian Forest Act 1927 na Piri Bachana Kangron Singh, Thugai Batan Natana Lamlaki Sao Che Singhi Punsida, Singh Naba Amadi Akoi Bigi Pibim da Akai Batho Ali, Makata na Miyam na High River Reserve Forest Asi Gi Manung da Ayaba Yau Duna Chinkaba Madikem na Chingba Pangtok Biganu Haina Apil Taurakli. Northeastern Council NEC gi humbura ni thoshiba plenary mi fangima hoina na Mizoram gi Rajyapal Bijay Kumar Singh na Rajya aduki tongan tongan ba chakho thorang gi thabak sing yeng singkre Mizoram gi lobu banda ngase pangtho ki ba mi pham da Rajya aduki tongan tongan ba chakho thorang gi thabak sing mi pham aduna ningthina pukhatna ba khanaki Rajyapal na hai kendra na awang no poki Rajya pumna mu chakho na na ba ache pe phirikalu na thabak paikhatli mahangna Rajya sarkar gi bibha pumna mangna lakli ba mi pham asi mahiyana ba mi Mipam ama ohena bapuna hona minabutsu haiki. NEC gi plenary mipam lakliwa sagos animita silong da pangtokani. Mizoram da kendra gi lawu singu mantralo yi makhada lebag le haupa na ba amadi tungkoi na chanaka da ba lawu gi pathap sing yokhana na bipandam da khet bachau avian haudokre. Campaign adu Rajyapal Vijay Kumar Singh na lobuban da haudul adu na hai masina lebag le hau changeng taudu na Chana Bahar Singh Singh Naba Amadi Mahousagi Oiba Low Pathap Singh Singh Naba Pandam Thamli. Rasan Gi Har Amadi Til Hidak Singh Pakthak Nana Singh Naba Gi Matang Da Palladuna Rajyapal Nahai Masina Manama Singh Thariba Lofum Amadi Miwebe Gi Haksel Da Chawna Akaiba Piri. Prime Minister Nation Mission Gi Makhada Chang Naina Lebaag Lahau Changing Taupa Amadi Mahousagi Oiba Low Pathap Singh Zathabina Basu Rajyapal Na Apil Tauri. Bao Gi Marakta Na Atemba Break Amamu.
6: Mediation for the Nation 2.0 haukiba January gi tang ani English singani ga kun ge taruk tagi haudokre campaign ase gi manung chana case kayamasu loishin na bagi khudong chaga piri casing adudi khardang palawada matrimonial dispute case accident claim cases domestic violence check bound case commercial dispute case service matter cases permanent compound devil cases consumer dispute cases debt recovery case partition case eviction case, land acquisition, amadi atopa civil case kayamani. Campaign asina wakhal laitaba santi laiba amadi sokhutpa kayama piri. Khanghan jariba High Court of Manipur amasung Manipur State Legal Services Authority
7: under the aegis of Mediation and Conciliation Project Committee MCPC Supreme Court of India.
6: Hena kupamarol kitamak Office of the Manipur State Legal Services Authority ADR Building Lamphel Courts Complex Lamphel Part Imphal West Mobile Number 9245049660 da contact dobyo.
4: Akashvani Imphal degi pau tabiri. National Panchayat Award di singa nikun manga yentopagi torom heng New Delhi da pangtok lagani masitaleba sigi mathau niti na pangtopa panchayat nifunitoy da manasi kushinagani. Mana yentopagi torom da Dindyal Upadhyaya Panchayat Satta Vikas Puruskar category da Gram Panchayat Kuntramari amasung Nanazi Deshmukh Sarvottam Panchayat Satta Vikas Puruskar category da panchayat nipan da mana pigani torom du da mana panglaba panchayat ki makuk singna makhoygi singthan ngay oiba thong sing utgani. Rasapati Dorpati Murmun Hari, Sixan Mio Amabumorumdam Lepcha Bangamba Amasung Saktiba Mio Emma Ohenduna, Samasa Chown Owen Bapura Pangami. New Delhi the Pangtopa Travel Beneficiary Scholarship Scheme Gikanaba Panglaba Mahiroshinga Unabada, Srimati Murmuna Hai, Samasa Machakot Pahai Basi Sel Tungi Pipam Pagat Bamasung Mahima Singi, Tak Wanglaba Matamda Oibangangani. Rasapati Nai, Serkana Packet Pas Scholarship Scheme Singi Matinga, Travel Mahiroshing Awamba Taki Mahimasing Tamduna Kodong Jabakya Pangbangam Le. High Court ki Chief Justice Mari Amasung Senior Advocate Amanga Si Supreme Court ki Just Oina Washak Law Kray. Chief Justice Surya Gyanam Makhoi Manga Bu Washak Law Ki Makhoi Sing Adudi Punjab Amasung Haryana High Court ki Chief Justice Justice Sel Nagu. Bombay High Court ki Chief Justice Justice Sri Chandrasekhar. Madhya Pradesh High Court ki Chief Justice Justice Samjib Sachdeva Amasung Jammu Kashmir Amadi Lada High Court ki Chief Justice Justice Arunapalli Amasung Senior Advocate Venkita Subramaniam Mohanani. Kendra ki Science Amasung Technology Mantri Dr. Jitendra Singh Hairi, Varat Amasung Germany ki Marakta Vigyan ki Lamdi Hena Tengbang Pinabana Lebaani Mari Hena Chachilan Bangam Lagani. Lebaani ki Luchingba Anina New Delhi da Quantum Communication Photomics Yaw Na Tongan Tongba Lamkya Ki Matang Da Wari Shana Ki. Thormadu Da Wangang Bada Dr. Jitendra Singh Hai, Malingi Oina Quiet Ki Chawa Ohum Suba Startup Ecosystem Varat Na Yubu Oibangam Le. Masina Technology, Hakshal, Water Technology, Artificial Intelligence Amasung Space Technology ki Lamda Varaka Ati Maling Leba Sung Mirakta Tingbang Pinda Bahinga Lagani. Mahanahai, Varamsung Germany Mirakta Science, Technology, Innovation, Amasung Leba Anigi, Miyang Mirakta Apaba Marit Lenerakli. Sijitrendan Hai Mipamaduna Leba Anigi Mirakta Research, Innovation, Amasung Udiokilam de Hena Chakot and Bugi Kudong Chaba Piragani. Varan Yumbu or Yuna Bricks Cultural Working Group ki Anishba Mipam Uttar Pradesh ke Varanasi da Thasigi Maridegi Manga Papa Pangtok Lagani. New Delhi da Pangtopa Paugi Mipam Amada Culture Mantraluki Secretary Vivek Agarwal na Wafamasi Loktoki Bani. Numinini Chatagadaba Mipam Asina Bricks Labour Singamarakta Culture Gilam da Tengbang Pinan da Bahengan and Bawapum Kanagani. Mipam Asida Maru Oina Creative Economy Amasung AI Heritage Ngakshin Natamba Kala Sanskriti Amasung Tungoina Choko Thorang Akanaba Miyang Tangani. Griha Mantralaya na Immigration and Foreign Amendment Rules listing ani kuntruk lakthokre masigi makhada registration ge matam amasung apil tobugi mo hanegi Immigration and Foreigners Rules listing ani kunmanga degi ahong bakaya hapchile amendment asigi makhada leba asida mapale bakti lakpa miyoshing bharata hek europa degi nimichama marfuni ge manung da registration ge thabak loshing ga dabani adumoi nam tangai fedaba pibam lerebadi thengna registration tobugi ayaba supi gani hairi. National Highways for Electric Vehicle NSEV ki Director Avishit Singh Nahairi Vada Asi Hose Electric Amasung Electronic ki Kudong Chaba Leraba Highway Singh Sangapada Loinana Hena Paba Amasung Tung Goina Chakot Tatuksa Singh ki Pambai Leraba Leba Amo Oiri Housing Sana Bagi Pau Ngangbam Amo Khomba Degi.
8: Manga Chuba MNCA Women Senior One Day Trophy ki ngasi sanakiba league match da thau thamai banna Al Amin Lilongbu wicket tara da thoikre mari suba MNCA Men's Under 19 One Day Trophy lisingani kumanga kontruki ngasi sanakiba league match da ESU Wangkhai Palace compound LCC Lamchangbu run chani yangkhai da thoikre tara hum doi suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi lagthawal public ground da sanakiba match da YPICU Lalambungna YWC langthabalbu run sama tarita thoi kre.

0: ta lai sto ro hai du na hosta na le he ore hai na khum la si hai den ta ore ba
1: o ma du na pare ma du na pare a shu da ne a shin bu du hai ru nu pun si da minam ba ma sa ma sa khara su ma tang sa na sa na ngang pa tam isa si di
2: to bi o to bi
3: thap suning da ba kang hu si amuk la ra ma nen ta hai to hai ner mi du ye sai
1: nang ye ba ji ning thori la li ma len he कौशल उतना उतना
0: होय बाबा बाजी कोई लाख पीरे काके पीरो बाजी
2: होय होय होय
0: सब कुछ सोम दफन भी बाजी
2: कोई रेडी दे दे लाख लोग नहीं ना
1: इतना काके पीरो काके पीरो
0: कहीं ना हाशिप
2: इतना ओ
1: इतना
2: मैं शीन तरने ना हाल नो मा एक कोई खर शाब चरा में शाशिए देना हरम बतू बा
0: इबु भाम बताजे दे बाजी
2: पीरा इबु तो नपान करीम तो हाय दोरने
1: इता मखोइन खंगरोय सुमदोबुन इतो इसा सिंगा आइगा खुदक तलेपना बवाफम मलालेदना नखोइ दाइजखिबा प्रोग्राम दो कैंसिल तोरगा अतो पथबकमा चतपतारे इतो पिकोइदा पाहर दोरक्ति हायदुनाने वारो बिबा यादरे इबोतोंबा
0: बाबा
1: नंगा मौगा सोंग सोंग लोशलोर चलो ए नंग बाजी खोय ग वारिंग हक्तंग सागे को
0: होय बाबा
2: सत कदब प्रोग्राम म दि लई माने न खोय गिसे अदु कदाय द नो बा नंग न सक तोरि छिबो
1: तो सुमदो बने आइसे नसी दगी नसी दगी नते हौजिंग मक बारुनि सिं खोंग द लैबा ऑल इज होम टू द चपतारे
2: अदु दु दि करी तो बसे तोरि बनंग दे
1: सुमदो बने तो सिद युम सिदी अंगांग सिंग युम साबने इशु की परखा मया नक्षी लगपने अदुगा इबो तोम बसु मतम खरदंग क्वार्टर द लेतब यादी हाइब मताम लालबा अंगांग सिंग नदी सिलबसु सिना क्वार्टर दु द लेरुसी हाइब नियाम कन्ना अदु द एने यादबा अदु दनी आइन ओलेज होम दुदा लेजगे हाइन कन हाइब दगी हौजिक चटनाबा हाइदना थौरांग तोरोलिबसिने
2: ए नंगि जे ओलेज फ्रॉम द सटनाबा थौरांगनिने
1: माने माने माने
2: अरदुति नसानि पागा नमोंगुने दि करी हाइबा
1: आइन हाइजेखिबदुने आंगां सिंगदि सपिखिनु जिलबथु सिन्ना क्वार्टर अदुदा पुनलेरुसि हाइ नामकन हाइबने याम खांगफर पोने इशोने साखि
2: आदु पुनब पोसैनि लांगलि छ्या
1: ฮ่อยๆๆมาดิชิชิชูปูโดริฮ่อยๆๆไอ้อาดาไฉเรียงวาเรียงคริอีเรกะมะตําเลนนะบะปูกิโตบุริเดตอบะโตชิงชิชูปูโดริฟาฮ่อยๆๆนะซะนุปิกะไอ้กะโลโฮมบะกิพอตูโอดูนิอะกาดูดะเทลุเกดันโตบุเนอาดูไอ้นะไลโตบุมะพะมะดูดาบะบะไอ้โปเซชิงเซซุมฮอนโดบะฮอกเจรัมละเกซอลอลฮอนโดฮอนโดฮอกเรฮอกงะกะพอตูโอดูดิปูคิกะนุโกกายละกะนิ
2: ไอ้ปะไปเกฮ่อยบะงายคุยตอบีอีโบตอมบางายคอบาจีกะริฮายเกบาจีกะรีโนนะคุยเนตอบีชะฮะกะรีโนนะคุยเนตอบีชิโบอีตอบีอะงางซินะเนะมะพัมดุไลรุนะบะไฮบะเนติไฮบะนีไอ้นไฮเจกริบะดุดีมะมะซิฮูจิชิมะซากังคะปะลิปเตเนเซงายคอ
0: इबो
2: ตอมบาบาจีมุนเนตอบาจีบัวคระไฮคิเทงิตัมโบมะตัมเซอายอกเรออฟิสมะตัมซุยอรุละนีจาจาทุงละบะตอรุละอบะบะมะวะตอมบินังชุงไคคอบาจีอะไอคุยคระเทงคระไฮดันตอบะนีอิบตอมบาบาจีนะคอยนะปาชิโอเลจฮอนเดทามุรุนีไฮบาฮะคุมุเน
0: นครอันนี้นะดาปาชิบุงชิดกิโอเลจฮอมเดทามูรินิไฮบาฮอยบาจิมาตัมครัสซุมบาจิซุมดายุมซาบเนกะรีเนไอคุยซูควอเตอร์ดะไลตะบะยาดะบาชิฮะพิบัมมะมะซุมซาดะบะดะกิซุมนครอันนี้นะควอเตอร์ดะไลโดริดิกะรีเยซุมดายคุยซิเซคเรทารีนาออเดอร์มะทอลอกปาบาจิอะดูควอเตอร์ดะกิงนังอิออฟฟิศพาวเซตบะกะ
3: ยุ่นดกิออฟฟิศพาวบัสตบกะดีอะกะระมะนะนักปาอะดูกิบุดียุ่มสิไดซัตปะนะนักปะยามะเฮเนดะบะบาจิบาจิมะสิปุมนะมะกะเซไอควยอิมุงมะนุงกิมิยอยซิงปุนนะตานะระกะยานะดุนะเลียบนะขิบะวะพัมนิเนบาจิ
2: กะกะรีกะรีกะรี ꯈꯪꯉꯦ ꯈꯣ ꯃꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯤ ꯅꯦꯕꯤꯃ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣ
3: ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯤꯅ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯃꯛꯇꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣꯕ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯊꯗꯅ
2: ꯑꯥ ꯏꯇꯥꯎ
1: ꯏꯇꯥꯎꯕꯤ
2: ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕ
0: ꯕꯥꯖꯤ
2: ꯀꯅꯥꯗꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯏꯃ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯈꯣ ꯅꯪꯁꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯧ ꯅꯄꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤꯅꯦ ꯍꯤꯡꯈꯣꯜꯁꯦ ꯅꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯦꯡꯇꯣꯛꯅꯁꯤ
1: ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯌꯥꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤ
2: ꯌꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯇꯧꯕꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯁꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯐꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯁꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯊꯅꯕ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯦꯜ ꯈꯔ ꯄꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯍꯤꯡꯈꯣꯜꯒꯤ ꯄꯇꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯏꯇꯥꯎ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯁꯤꯟꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ
1: ꯁꯤꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ
2: ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯨꯝꯃꯨꯅꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯟꯗꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥꯕ
1: ꯁꯤꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯁꯤꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ
2: ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯁꯤꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ
3: ꯑꯣ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯪ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯈꯣꯜꯒꯤ ꯄꯇꯥ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯕꯥꯖꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯦꯟꯐꯝꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ ꯕꯕꯥ ꯕꯕꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯐꯒꯗꯕꯅꯤ
2: ꯅꯪꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯪꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯈꯪ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯪꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯪꯒꯅꯤ ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯥꯎ ꯁꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯄꯥꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯇꯤꯡꯈꯤꯕ ꯅꯄꯥꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯜꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯃꯧꯁꯤꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯍꯩ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯃꯥꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯕꯥꯅ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯅꯃꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯔꯕ ꯅꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯕꯥꯎꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
0: ꯕꯥꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯥꯎꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ
2: ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯎꯖꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅ
1: ꯌꯥꯔꯦꯕꯤ ꯇꯧꯕꯤ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯅꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯅꯠꯇ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯃꯁꯥ ꯍꯥꯀꯠꯂꯤꯗꯦ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯅꯄꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯝꯅꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯐ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯄꯦꯟꯖꯕꯅꯦ ꯏꯇꯥ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯏꯇꯥ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯏꯇꯥ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯔ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯅꯪꯗꯤ ꯅꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯅꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯪꯅ ꯅꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ ꯈꯪꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯄꯥ ꯋꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯊꯔꯦꯅꯦ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯥꯡꯉꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ
0: ꯕꯥꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯀꯨꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯈꯛꯀꯤ
2: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯣꯟꯗꯣꯕꯤ ꯇꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯂꯩ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯕꯥꯖꯤꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯩꯕꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯧ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯁꯤꯃꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ
0: ꯕꯥꯖꯤ
2: ꯏꯇꯥꯎ ꯅꯍꯥꯜ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯏꯃ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯨ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯇꯥꯔꯦꯔꯒꯅꯦ ꯅꯁꯥ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯜꯂꯛꯆꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯇꯥꯎ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯅꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯁꯤꯔꯨꯛꯇꯤꯅꯦ ꯏꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩꯅꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯀꯩꯗꯧꯔꯨꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯁꯥ ꯄꯣꯛꯂꯨꯗꯅ
1: ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ 파전 아둠 세나리 할비니 떠오는 거.
3: 아이코이수, 아이코이는 엄미 막해디 파전 아둠 호나자리다 바지.
2: 이샤나, 이모나 알로이 왜 쿠부시는 거디? 뭐 쿠기 마통이 내 떠. 아두기도 먹도 보 이샤 뽕내리고 나들어. 하, 이샤는 빠 뽕내드나 하라고 저키바. 이샤는 오늘 방해드는 농아이 저키바 거야 두보. 하여네 코나 할로를 맞담다. 아 수많은 군독 나버로.
1: 떠.
2: 이보 또 봐. 能给他他给多了多，那八千的门文的比我还不呢？看看还了么？能的能给奴比个啥那啥不大？啊，听个么呢？很老的白亏那办不对，那亏那他不晓得那么大一大，爸爸，小路去去还能吧？还能不么等着说？哎，亏还能来爸爸还不？这里个么好不么等晓得那么大一大，爸爸，这里下去个还能吧？啊，都可给完。那亏的爸妈亏的东家亏，说那个，哎，亏来的还不给，他给我都等的，我又还不你那用啊？
1: 一刀，我都不能买刀，老那个刀里边的还不你，哎，给啥刀不噶？一毛刀不噶呐？
2: 一刀，那哎，那是俺让的天了，不能天的，哎，亏老那坑，老那位，那还没开，我们都他那把我们，那是的，没理头了，咋了个呢？一刀，
1: 一刀，
2: 一波刀吧。
0: 바지
2: 낭나 레빵암 락파 드로잉 아로에 까파이 까파이 샷파 해락바다 나파시나 낭이 나쿠토 샴베아레가 하이나 하이나 샷파 담비를 크리드 아두가 나시 나파시나 마빵을 여룩드라바 레빵암악드라바 마땀마시다 낭부뽀뽀 나파시기 샤나기세슈 오이게하게 디칸드레 아레가 탁탁 밀려봐 나빠시기 마쿨라 시부 오래서 원두기 동바드도 빠일루에 갈리바 랑이 타모이도 보까리를 샤버누네 이봉어
0: 맞이
2: 아두가 뭐 낭수 칼루 낭구 복시 낭부 핵폭파 나빠오이람 랩디 낭 나빠도 보 아쉽나 오래서 혼다 틴도폭파 남기더라
3: 맞이
2: 마두슈 나시기 누미시다 나시시 까람벅거리 누미 노 캉브란 나코에 구문에 나 시기 누미세 가야 마루 외반 누미 너
1: 안나항생디 강한 모이 떠있다
2: 에 이나 떠 나 시세 나 보아기 마 뽁 누미니 그러면 누미 뽁뽁 누미니까 따리까 짭샤나 봐 시는 뭐 누미세 빵는 톡접니 내샤사 아두나 나 시에시 나 보아기 시행을 하면 마 뽁 누미니 哎，可不下下面那些害人不给，哎，可以拉过你呢。阿杜哥，阿叔们当了碰吧，弄完了不你们阿西的，那爸爸我来就哄得天都给坑吧。嘿，还别给打走，阿叔查提把爸爸西的呢，都会得跪下查。别提别的来吧，来碰苦丁吃都呢，阿来一不啥那路把个都呢苦了那么久，没事给爸爸西的过碰我们来跪下查。
0: 阿西。아이고 이놈 막간 태인바대기 랑이 뿐만 나비우 맞이 하이 능 나비홍도 맞이 맞이 아이고 사라 당나보다 맞이 아이고 시험절하게 아이고 이가 시디 오피 수수디 라우르게 마마 마마 아이고 난자리 마마 하이 마마도 그러모 그러무네
3: 마마 아픔이나 사싱보 낙비우고 봐봐
2: 또 고이살게
3: 나테 바지
0: 바지
3: 아이 고이삭 통간 나버 떡절하게 바지 엉덩아이 비코 삭세 삭비코네 바지
2: 사로이 너에게 삭감부터 사로이 아이 고이살은 아두근데 이보 돈바
0: 바지
2: 나 코에는 나 바보 오래지 혼자 탐루나버 실리버 터라 떠오리버 터복싱으세 난기 삑리번데사 나는 눈빛 크딘 마쿠트 샴누나 까다 합두나 디샘틴바 셀리번 나사니 파도 아두데디 캉글루 누꼬 마나 캉크루부디네 마나 헤잉 샤오레르가 마마마빠 외부싱부 오레즈 홈드 틴베기 샤남비야마 레이보이레 칸두나 나 쿠이부 알로에 마땀다 나 쿠이부슈 오레즈 홈드 틴게 할까니
0: 그치
2: 이따 에이 짤라
1: 저외로 이따 오비 아이 춤내 줘라게
0: 봐봐 올해서 없는 셋부터 살금씩
4: 똥을 씹어봐봐. 아이

0: ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की पहली कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। परिकल्पना मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
1: जब शब्दों के पंख नहीं थे, कैद थी आवाजें सीमाओं में, भाव शून्य थी कल्पनाएं जब, तब उतरा वह स्वर आंगन में। उसने तोड़ा सीमाओं को, शब्दों को दी नई उड़ान, जन जन को दे अपनापन, वह बन गया जीवन का वरदान।
2: यह जोग था, संयोग था, नए युग का प्रयोग था, कुछ सुनने वाले, कुछ सुनाने वाले, कुछ ज्ञान की, कुछ विज्ञान की, कुछ जीवन की, कुछ दुनिया की, रची थी दुनिया भारत में पुरुषार्थ की।

0: बचपन में सबसे पहले महाभारत में ही हमने आकाशवाणी शब्द सुना था, जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के साथ विदा करने जा रहा था तो उसे एक दैवीय वाणी सुनाई थी जिसे आकाशवाणी कहा गया।
1: देखो देवकी, अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, वहां जाकर अपने सास ससुर और वासुदेव जी की खूब सेवा करना।
2: ऐ कंस, तुम अपनी जिस बहन देवकी को इतने प्यार दुलार से विदा करने जा रहे हो, उसका आठवां गर्भ तुम्हारे अंत का कारण होगा।
1: कौन कौन है ये? किसकी आवाज है ये?
3: ये आकाशवाणी है युवराज।
4: महाभारत के बाद जब वैसी ही आवाज चुंबकीय तरंगों से निकलकर एक रेडियो रिसीवर के माध्यम से सुनाई दी तो उसे कहा गया रेडियो प्रसारण।
0: इतिहास के आईने में देखने पर पता चलता है कि सन 1920 से 1926 के बीच कुछ शौकिया लोगों ने स्वयं के रेडियो क्लब खोलकर उनसे प्रसारण किए। भारत में रेडियो प्रसारण के पूर्व पक्ष पर संकलित जानकारी को स्वर दे रही हैं आकांक्षा सिंह।
5: अगस्त 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया और पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के सहयोग से बॉम्बे स्थित कार्यालय से पूना में बैठे गवर्नर जनरल ने प्रसारित संगीत सुना। ये भारत में रेडियो प्रसारण का पहला प्रयोग था। नवंबर 1922 में कलकत्ता में रेडियो क्लब ऑफ बंगाल, 1924 में बॉम्बे में और 1924 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब बने। ये सभी प्रयास शौकिया लोगों ने किए थे।
4: इतिहास में जिक्र है कि भारत में प्रसारण 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ। इससे पहले 13 सितंबर 1926 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और अंग्रेज सरकार के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।
0: लंदन से भारत आए अधिकारी लियोनेल फील्डन ने 1 जनवरी 1936 को प्रसारण नियंत्रक का दायित्व संभाला।
4: उसी दिन दिल्ली स्थित 18 अलीपुर रोड के 5 कमरों के मकान से इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS का प्रसारण शुरू हुआ।
0: श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें, ये वही जगह है जहां अब परमानंद अस्पताल है।
6: This is the Indian State Broadcasting Service. Time by our studio clock is a 12:15. Welcome to our lunchtime broadcast of film music. For your listening pleasure, we commence the program with a song from the 1933 film Yahudi Ki Larki, rendered

प्रसारण नियंत्रक लियोनेल फिल्डन ने अपनी पुस्तक नेचुरल बेंट में लिखा कि वे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम से संतुष्ट नहीं थे। संयोग से उन्हीं दिनों वॉइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के आवास पर एक मिलन समारोह हुआ। अवसर मिलते ही फिल्डन ने वॉइसरॉय से अकेले में अपने मन की बात कह डाली।

0: sir.
1: Hmm.
0: Sir, I find myself in a bit of a predicament.
1: Hmm?
0: And I was hoping for your guidance.
1: Go on, Mr. Fielden.
0: The name, sir. Indian State Broadcasting Service. It doesn't quite sit right. I believe you would agree.
1: Mr. Fielden, this Indian State Broadcasting Service. Rather a mouthful. You're quite right.
0: Yes, sir. It feels administrative. Distant. Not something people can truly connect with. What we need is a name that belongs to the people of this land. Something that feels inclusive.
2: एक लंबी चुप्पी के बाद वॉयस रॉय ने बड़ी चतुराई से अपनी गर्दन हिलाई.
0: Perhaps something like All India
1: Radio.
0: Exactly, sir. Perfectly put. All India Radio. What a name. It carries both reach and identity.
1: All India Radio. All India Radio. It does have a certain resonance.
0: It speaks to the future, sir. To a time when voices from every corner of this country can be heard as one.
1: Very well. Let us give it a future then.
0: Of course, sir.
1: All India Radio, it shall be.
0: Thank you, sir.
3: इस तरह 8 जून 1936 को पहली बार इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के स्थान पर ऑल इंडिया रेडियो की उद्घोषणा की गई.
4: This is All India Radio.
3: अपनी किताब नेचुरल बेंट में लियोनेल फिल्डन ने लिखा है,
5: मैंने ऑल इंडिया रेडियो के मोनोग्राम पर भी काम किया. भारत के मानचित्र के ऊपर लिखा है ऑल इंडिया रेडियो का सार, यानी AIR. बस मेरी अब यही एक निशानी बाकी है.

0: आकाशवाणी संकेत धुन की रचना का प्रसंग भी रोचक है।
1: उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में पाश्चात्य संगीत के निदेशक थे वाल्टर कॉफमैन। वाल्टर कॉफमैन चेकोस्लोवाकिया से शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। दिल्ली केंद्र पर पाश्चात्य संगीत का दायित्व जॉन फोल्ड्स के पास था। इन दोनों ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए जिस सिग्नेचर ट्यून का सृजन किया वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग शिवरंजनी पर आधारित थी। इसमें प्रयास था कि भारतीय संगीत की भी झलक दिखे। इस धुन में 8-8 सेकंड की आवृत्तियां हैं। सामान्यतः ऑल इंडिया रेडियो की प्रसारण सभा शुरू होने से 2 मिनट पहले से आपको ये धुन सुनाई देती है।

0: ये वो समय था जब ऑल इंडिया रेडियो अपने प्रसारण केंद्रों और कार्यक्रमों को विस्तार दे रहा था। उसी समय पेशावर, लाहौर, लखनऊ जैसे केंद्र अस्तित्व में आए।
1: 19 जनवरी 1936 को पहला समाचार बुलेटिन दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। 1 अक्टूबर 1939 को पश्तो भाषा में पहला प्रसारण हुआ।
0: दुर्भाग्य से उसी समय 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
2: द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में रेडियो प्रसारण के संदर्भ को बता रही हैं आकांक्षा सिंह।
3: द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ये युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के मध्य लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन शामिल थे। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। भारत उस समय अंग्रेजी साम्राज्य का उपनिवेश था। ऑल इंडिया रेडियो ब्रिटिश सरकार कहें या अंग्रेज सरकार, उसके नियंत्रण में था। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो उस समय वही प्रसारित कर रहा था जो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था। उस काल में ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारणों के ऊपर एक सेंसर अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था।
0: देश के लोक गीतों में भी इस युद्ध के प्रति जनभावनाएं सुनाई देने लगी।

0: 6 फरवरी 1943 को ऑल इंडिया रेडियो 18 अलीपुर रोड से नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित प्रसारण भवन में आ गया और यहीं से प्रसारण होने लगा।
1: ये प्रसारण भवन मात्र ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि संवेदनाओं, सृजनशीलता और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है। प्रसारण भवन जिस शैली में बना हुआ है वो

के किसी एक झकोरे से मेरे पांव उखड़ जाएं, ये मुझे मंजूर नहीं। मेरा धर्म बंदी गृह का धर्म नहीं। ईश्वर के रचे नन्हे से नन्हे जीव के लिए उसमें जगह है, लेकिन जाति धर्म या वर्ण का दंभ उसे छू नहीं सकता।

0: आकाशवाणी दिल्ली में लंबे समय तक उप महानिदेशक रहे श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं,
1: ये जो बिल्डिंग है ये हम लोग चूंकि रोज उसमें आते जाते हैं तो शायद महसूस न कर पाए, लेकिन ये दुनिया की अनूठी इमारतों में इसलिए है कि ये जो स्पूल टेप होता है जिसमें टेप पे सब रिकॉर्डिंग हम करते थे, ये उस स्पूल टेप के आकार में बनाई गई उसकी सारी। अब स्पूल टेप को आप देखिए और कभी बाहर फोटो मिल जाएंगी उस तरह की, तो आप देखेंगे कि उसको उसी तरह से जैसे बीचों बीच में वो मुख्य बिल्डिंग हो गई, फिर इधर उधर जाके जैसे स्पूल टेप में होता है वो उसी तरह से बनाई गई है। और इसी वजह से मतलब हर महीने शायद जो हमारे ये इंस्टीट्यूट होते हैं आर्किटेक्चर वाले, इनके विद्यार्थी आया करते थे अध्ययन करने के लिए और देखने के लिए, तो ये खास बात है। ये दूसरी बात ये भी जोड़ना बहुत अच्छा लगेगा कि एक जमाने में वो चार पहिए वाले आते थे, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, तो रेलवे स्टेशन पे जैसे ही लोग उतरते थे दिल्ली घूमने आते थे तो उनके पास एक कार्ड रहता था जो दर्शनीय स्थल है दिल्ली के, तो आप समझिए कि लाल किला कुतुब मीनार वगैरह कर लें तो शायद ये पांचवें नंबर पे इस इमारत को रखा जाता था लोग इतना, क्योंकि उस जमाने में रेडियो के लिए जिस तरह का वो थी क्रेज थी, तो ये वहां पर ये इमारत उस तरह से रहती थी। तो और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इतने लोग आए हैं पूरे विश्व के विश्वविख्यात, तो उस नाते भी उस इमारत का एक अलग एक महत्व हो जाता है और अपने आप में पूरा इतिहास भारत का संजोए है। यही वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस है जहां से इस देश के बंटवारे की घोषणा की गई लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, इसी के स्टूडियो से हमारे महात्मा गांधी जी का जब वो हत्या हुई तो पंडित नेहरू भी आए, सरदार पटेल भी आए और एक से एक सारे मतलब दिग्गज दुनिया भर के लोग आए, तो ये इमारत हर तरह से एक बहुत अनूठा स्थान अपना रखती है।
0: रेडियो के शुरुआती दिनों में अधिकतर वही लोग रेडियो में आते थे जो महफिलों में गाना बजाना करते थे और इनका पसंदीदा साज था हारमोनियम।
2: हारमोनियम भारतीय साज नहीं है, ये अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में आया था, लेकिन बाद में ये लोगों के दिलों पर छा गया। उस समय लोग इसे पेटी बाजा कहते थे।

परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 1 मार्च 1940 से रेडियो में हारमोनियम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो नवंबर 1972 तक जारी

1936 में लियोनेल फिल्डन ने भारत में जिस प्रसारण तंत्र को स्थापित किया, उनके जाने के बाद उसे सुदृढ़ किया महानिदेशक एएस बुखारी ने। ये वो समय था जब पूरे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन शिखर पर था।

ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने का मन बना चुकी थी। ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी बढ़ चुकी थी। इस प्रसंग के साथ हम फिर मिलेंगे प्रसारण की प्रतिध्वनि श्रृंखला की दूसरी कड़ी में।

अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की पहली कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। नाट्यांश स्वर अशोक अग्रोही, सुधीर राजौरिया, पार्थ सारथी थपलियाल, आकांक्षा सिंह, नीतीश अरोड़ा और मनोज पाइनकर। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of five accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, two other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
3: Namaskar, thank you.
2: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
4: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा, जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से

0: देगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पर दो दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी, कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले

0: बाजार में मूल्य पर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन तब
1: जैसे
0: से
1: हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: न्यूनतम
1: कहते
0: समर्थन
1: हैं
0: मूल्य कहते हैं, किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद ना करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी के का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले।
1: जी
0: सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल
0: काम किया।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere. Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज़ से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25

0: परसेंट अकेले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़, और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक्स से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. The very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers, and nearly about 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hai unka share bhi badhkar 20% ko par kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hama thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
3: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 170,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
3: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब आप समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ माधुरी, लेकर गीत मेरे मन मीत, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सदाबहार नगमे, और वो भी बिना रुके।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और इसी के साथ गीत मेरे मन मीत का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ इजाज़त दीजिए माधुरी को भी। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से

द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विदेश विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कल मैक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज को विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 11 बजे शुरू हुआ। 3 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर मैं हूं आपके साथ माधुरी। चंद तस्वीरें बुतां, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक पर संदेश पहुंच जाता है, वहां खत या पत्र की अहमियत को समझना और भी ज़रूरी हो गया है। तो आज निशिगंधा के बहाने करेंगे बात खतों की, या कह लीजिए खतूत के, पत्र की, या फिर लेटर्स की।

0: नहीं होते, बल्कि वो दिल की गहराइयों से निकली भावनाओं का रूप हैं। वो समय की दीवारों को पार करते हुए रिश्तों को जोड़े रखते हैं। खत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें समय लगता है, और जब आप किसी को खत लिखते हैं ना, तो आप सोचते हैं, शब्दों को चुनते हैं, अपनी भावनाओं को सजाते हैं, पिरोते हैं, तो इस तरह किसी के दिल का हाल किसी के दिल तक पहुंचता है, वरना कौन जाने दिलों का हाल क्या है।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

अब जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और ये समय है जब हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए निशिगंधा। और निशिगंधा पे आज चर्चा हो रही है, बात हो रही है खतों की। समझिए जरा कि जो खत लिखने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया खुद में एक प्यार भरी तपस्या है। ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज की तरह तुरंत नहीं चला जाता ये, बल्कि ये इंतजार का एहसास देता है। जब वो खत प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा खजाना होता है, जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। समझिए कि आपका कोई जानने वाला बहुत दूर चला गया है, तो ये जो खतों का ताना बाना है ना, ये जुड़े रखता है, और इसी जुड़ाव से वो दूर का व्यक्ति भी पास आ जाता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है निशिगंधा का, जहां आज हम बात कर रहे हैं पत्रों की, खतों की, लेटर्स की। और खतों के बारे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर हुए हैं, एक दो मैं भी ज़रा अर्ज करना चाहूँगी। कोई पुराना खत, कुछ भूली बिसरी याद, जख्मों पर वो लम्हे मरहम होते हैं। कभी ये फिक्र कि वो याद क्यों करेंगे हमें, कभी ख्याल कि खत का जवाब आएगा, यानी कि कोई कहीं किसी खत का इंतज़ार कर रहा होता है।

बात खतों के चल रही थी और बात खत वाले शेरों पे पहुंच गई, और जब मैंने दो शेर सुनाए तो मुझे दो और याद आ गए, तो चलिए उन्हें भी आप तक पहुंचाने का काम कर ही देती हूँ। और ये जो अगला शेर है ये इस तरह से है कि कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू, कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू, उनके खत आज हमें तेरे सिरहाने से मिले। और एक और है, शेर है कि मिट चले मेरी उम्मीदों के तरह हर्फ, मगर हर्फ शब्द, मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू न गई। और किसी दीवाने के इस बात को सुनकर मुझे उस दीवाने की याद आ गई। जी हाँ, अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म हीर रांझा से।

कागज पर उतरी स्याही दिल की जुबां बन जाती है, खत लिखा तो रिश्ता गहरा यादों का कारवां बन जाती है। खत वो पुल है जो दूरी को भी प्यार से जोड़ देती है। पुराने समय में खत ही समाचारों, प्रेम, दोस्ती और यहाँ तक कि युद्धों के फैसलों का माध्यम हुआ करते थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने खतों के जरिए ही अपने संदेशे पहुंचाए। प्रेमियों ने अपनी बेचैनी अपने खतों के जरिए ही बयां की।

तुम्हें ये चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ समाया होता है, और जब जब वो आता है न जाने किसकी उम्मीद जागती है और न जाने किसकी उम्मीद टूट जाती है। आज के डिजिटल दौर में हर हाथ में मोबाइल है, आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज देते हैं और चाहें तो कॉल करके सारी बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं। कई बार जो बातें नहीं भी कहनी चाहिए वो भी हम कह डालते हैं, कोई सेंसर नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब भी हम खत लिखते हैं तो बड़े एहसास के साथ लिखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ने वाले को कहीं मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस तरह से अपनी बातों को घुमाकर लपेट कर लिखते हैं, और अपना लिखा हुआ जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि सामने वाले को वो चीज़ भेजनी चाहिए जो अच्छी लगती है। लेकिन फ़ोन पर वो बात नहीं हो पाती, फ़ोन पर तो लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, और मनाने के लिए फिर दूसरी कॉल कर लेते हैं। तो ये जो दिल की बातें हैं ना, ये दिल ही जानता है।

0: ऐसे ही खतों में भी न जाने कितने अफसाने लिखे गए, भेजे गए। खत न सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि वो इतिहास को भी संजो कर रखते हैं। पीढ़ियां इन्हें पढ़कर अपने पूर्वजों की जिंदगी को समझती है। खत लिखने की आदत हमें ज़्यादा अच्छा सोचने, कम बोलने और गहरे में महसूस करना सिखाती है। और जाते जाते यही कहूँगी कि खत की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होगी, भले ही तकनीक बदल जाए, इंसानी दिल की भाषा तो वही रहेगी ना। आज ही किसी ख़ास इंसान को एक खूबसूरत सा खत लिखिए, देखिए कैसे कागज़ का एक टुकड़ा रिश्तों को नई जान दे देगा। आज ये बातें किताबी लग रही हैं, और शायद किताबी हैं, हो भी गई हैं, पर कुछ चीज़ें अपनी जगह छोड़ भी दें तो वो अपने निशान नहीं छोड़ते।
1: अभी अलविदा।

तो बीते हुए लम्हों को संजो कर रखने में ही यादों की जो धूल है वो हटती नहीं और यादें हमारे साथ रहती हैं। और ख़तों की इन्हीं बातों के साथ आज के निशिगंधा कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और गीत सुहानी लेकर मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। तो नमस्कार, और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। तो ये जो पहला गीत है, ये गीत लेकर आए हैं हम फिल्म श्री 420 से।

लता जी और साथियों की आवाज़ में ये गीत सुना आपने, फिल्म श्री 420 से शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हजरत जयपुरी साहब के।

ये प्यारा सा गीत सुना आपने आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, संगीत एसडी बर्मन का, फिल्म का नाम काला पानी और बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। और अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा है, चलिए सुन लेते हैं पहले।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गीत सुना आपने मुकेश जी की आवाज में फिल्म आवारा से। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लता जी की आवाज में फिल्म अनाड़ी से।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय बता दें, रात्रि के हो गए हैं 1:31 और पूरे 42 सेकेंड। और ये जो ओल्ड क्लासिक्स का सफ़र सुन रहे हैं आप, इसका नाम है गीत सुहाने। जी हाँ, सुहाने सुहाने गीत यहीं मिलते हैं आपको आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। तो अगला गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म बाजी से।

0: आशा और रफी जी की आवाज में ये गीत सुना आपने फिल्म दिल देके देखो से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म आह से लता जी की आवाज में।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी

दिल पे आशरा किए हम तो बस यूं ही जिए, एक कदम पे हंस लिए एक कदम पे रो लिए, एक कदम

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत सुना आपने, एस डी बर्मन का संगीत, और फिल्म थी 9-2-11, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल थे। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म बहार से शमशाद बेगम की आवाज में।

तलत महमूद की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप, फिल्म टैक्सी ड्राइवर से एस डी बर्मन साहब का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म देवदास से लता जी की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई, और रात सुरमई के साथ माधुरी है एक बार फिर आप सभी के साथ। गिनते रहेंगे सुबह तलक बेदारी में, फूल खिलेंगे जो शब की फुलवारी में, नींद भी बेदारी भी ख्वाब भी आंसू भी, क्या क्या है इन आंखों की अलमारी में। हमने अपनी नींद गवाही दी आखिर, ख्वाब नहीं आने की इस बीमारी में।

किनारा किनारे पे बेसुध पड़ा था, समंदर का भी जी भरा लग रहा था। हमें इश्क बस इस सबब से हुआ था, हमारे भी हिस्से में थोड़ा खुदा था।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:24 और 47 सेकेंड। ये सफर है रात सुरमई का। इरादा है किसी जंगल में जा रहूंगा मैं, तुम्हारा नाम हर एक पेड़ पर लिखूंगा मैं, हर एक पेड़ पे चढ़कर तुम्हें पुकारूंगा, हर एक पेड़ के नीचे तुम्हें मिलूंगा मैं, हर एक पेड़ कोई दास्तां सुनाएगा, समझ ना पाऊंगा लेकिन सुनूंगा मैं।

एक बेचैनी सी है अंदर भी और बाहर भी, और इस बेचैनी को कुछ यूं पिरो कर देखा है। सुनिएगा, कभी अपने अंदर उतर के तो देखो, घने जंगलों से गुजर के तो देखो। ये मंजर बड़ा बेतुका सा है, फिर भी संवर जाएगा रंग भर के तो देखो। ये सब्जा अभी आंख में आ रहेगा, जरा इस पे तुम पांव धर कर तो देखो।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। आप हैं रात सुरमई में। अपनी ही जात के सागर में उतरने के लिए उम्र भर तरसे हैं हम, डूब के मरने के लिए। एक तेरी चुप ने जुदा खुद से किया है हमको, हाथ से और अभी बाकी हैं गुजरने के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में से पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई के संरक्षित क्षेत्रों के अतिक्रमण मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कई दशकों से जारी हैं और लगातार बढ़ता गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 15 दिन बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम, पूंजी कोष और अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इनक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता में से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी।

ये है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल। रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही मेरे यानी पंकज के साथ, और मैं आपसे मिलता हूँ दो गानों के बाद। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के गाने से, यानी कि मूवी का नाम है एक बार कहो। इन दो गानों को सुनिए, फिर आपसे मिलता हूँ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मूवी का नाम जूली, आनंद बख्शी के बोल और राजेश रोशन का म्यूजिक, किशोर दा और लता जी की आवाज थी और हमराही शो के ये गाने सुने आपने मेरे यानी पंकज के साथ। और एक बार फिर से 3 जून की आधी रात में मैं और आप साथ में हैं और ये ऐसा पल होता है जहां हमें अपने पसंदीदा इंसान की सबसे ज्यादा याद आ रही होती है और उसको पाने की मन में ढेरों दुआएं भी बस ऐसा लगता है कि अब कबूल हो जाए और हर दिल किसी न किसी पर फिदा है। खैर, इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने जमाने के ड्यूट्स गाने और चलिए हम आपको ना बैक टू बैक ब्लैक एंड वाइट के एरा में मैं लेके चलता हूँ और आपको सुनवाता हूँ 2 ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप अलग ही लेवल की मदहोशी फील करेंगे। 2 गाने के बाद मिलता हूँ।

मुझे यकीन नहीं होता कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना जो है वो बीत चुका है। वो अभिनेता नहीं रहे, गायक चले गए, पूरी टीम संसार से चली गई, लेकिन आज भी ये गीतों की याद दुनिया में गूंज रही है। और सच कहूँ तो इन गानों ने ही दिलों की मोहब्बत को जगाए रखा है, वरना तो अब दिल की जगह दिमाग यूज करके लोग इश्क करते हैं। हमराही शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ, और इन दो गानों के बाद आपसे फिर मिलता हूँ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और ये वाला जो गाना है वो हर प्रेमी का सपना।

What a beautiful song. रात के 3:43 हो चुके हैं. आनंद बख्शी के बोलते हैं, आरडी बर्मन का संगीत, आशा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में एक में और एक तो फिल्म से गाना था. जब ये गाना चल रहा था मैं एक बात सोच रहा था कि कितनी हैरानी की बात है ना कि लोग किसी से अपनी नफरत का इजहार जो है वो कितनी आसानी से कर देते हैं. मतलब वो अपनी हरकतों से बताते हैं कि हाँ हम आपको पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं प्यार के इजहार की जब बात आती है तो उसकी भनक तक नहीं लगने देते. मतलब भनक तक तो छोड़ो, मतलब कोशिश तक नहीं करते. क्या नफरत में इतनी ताकत है कि हमेशा वो जीत जाए? देखिए, प्यार के इजहार तो करना चाहिए. प्लीज़ सामने वाले को ज़रूर बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं. उसके बाद उनके रिएक्शन जो हो सो हो, एटलीस्ट आपका मन तो ये भारी नहीं हो रहेगा ना कि आपने अपने दिल की बात कहीं नहीं, कह देनी चाहिए ताकि आगे की ज़िंदगी में उसे अपना हमराही बनाया जा सके. तो इस गाने के बाद हमराही शो में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलता हूँ.

हवाएं जो है चारों तरफ कितना शोर रहता है ना, दिल्ली जैसा महानगर जो है वो तो मानो शोर से ही बना हो, लेकिन रात के एक खामोश पल और सुकून, काश ऐसा हो जाता कि सुबह का उजाला ना ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे ही ऊँगती हुई नींद और इन गानों का मजा लेते हैं हम, लेकिन खैर सूरज चाचू तो निकलेंगे ही, लेकिन हमराही शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है। उसके बाद सुबह 4 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आप, और फिर सुबह 4:10 पर अरुणिमा शो में मैं पंकज आपसे फिर मिलूंगा। अभी के लिए सुनिए लता जी और किशोरदा की आवाज़ में दुनिया फिल्म का ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम पूंजी कोष और आम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रॉड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि डेलसी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरण्यमा। मैं पंकज हूँ आपके साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ, तो शुरुआत करते हैं लता जी की आवाज में बरसात की एक रात फिल्म से।

जैसे रात के बाद सुबह का आना फिक्स है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना भी तय है। स्थाई तो देखिए कुछ भी नहीं है। किस्मत फिल्म से इस गाने को येसुदास ने गाया था, आपने सुना। अमित खन्ना के बोल और बप्पी लहरी का संगीत था। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ और छोटी वाली सुबह हो गई है। सुबह के 4:21 हुए हैं और 3 जून की ये सुबह है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूँ आपके साथ। और इंसान की उम्र का ना एक टाइम पीरियड होता है और उम्र बीत जाने के बाद फल जो है वो पेड़ से अलग हो जाता है। तो इससे एक बार मिले हुए जीवन के हर पल का खूब आनंद लीजिए और इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सफर फिल्म से ये गाना था। किशोर दा की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक और एंदीवर के बोल थे। पता है अपने जीवन में ना हमें किसी इंसान को अथवा तो उसकी शिक्षा स्वभाव चरित्र को अपने ऊपर हमेशा रखना चाहिए, जिसकी स्मृति मात्र से जो है आपको बल मिले। और वो आप कोई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं या गुरु हो सकते हैं, जिनकी याद आपको ऊर्जावान बनाए अथवा तो उनकी तस्वीर देखकर ही आपको मन का बल मिले। सच मानिए, इनका स्मरण हमारी जिंदगी को सकारात्मक बना देता है।

सुबह के 4:41 हो चुके हैं। राजेश रोशन का संगीत था, नितिन मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल और जैसी करनी वैसी भरनी था फिल्म का नाम। इंसान का कर्म ही जो है उसके ना अच्छे बुरे दिनों का निर्माण करता है। और एक और बात जो मेरे बड़े मुझे हमेशा समझाते थे कि कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि समय का पहिया जो है वो बड़ा मजबूत होता है। कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे भैया कुछ पता नहीं है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है अरुणिमा। हमारा स्वभाव सबके हित के लिए हो, मन कर्म और वचन से हम किसी का भी अहित ना करें। जब हमारे कर्म के पेज पर हमारी कथा लिखी जाएगी तो कहने और सुनने दोनों महक उठेंगे।

बजे से 6:10 तक आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और इस शो के बचे हुए ये दो गाने सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगे।

0: समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष के किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद मामलों को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। ये व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश आज 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने श्री खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार में आज से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर चुका है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by CBSE, Central Board of Secondary Education. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE yesterday officially activated an online portal for verification of marks and revaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all the aspects of border matter.
1: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
2: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir. Mr. Jaiswal said that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. The ministry spokesperson also said the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India from today. Mr. Jaiswal said during her visit, Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi. India has welcomed the operationalization by Germany of the announcement waiving requirement of transit visa for Indian nationals transiting through Germany exclusively by air with effect from tomorrow. External Affairs Ministry in a social media post said that the announcement was made after discussions between Prime Minister Narendra Modi and Chancellor of Germany Friedrich Merz during his visit to India in January this year. The ministry said this new arrangement would further enhance people-to-people ties between India and Germany. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated his Bangladeshi counterpart Dr. Khalilur Rahman on his election as the president of the 81st session of the United Nations General Assembly. In social media post, Dr. Jaishankar said that he is looking forward to working closely with Dr. Rahman to advance the shared priorities of India and Bangladesh and strengthen multilateral cooperation. India have successfully conducted flight tests of the indigenously developed Rudra M2 air-to-surface missile from an airborne platform. The tests were carried out by Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force, IAF, under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. Ministry of Defence said all the test objectives were fully met. Defence Minister Rajnath Singh lauded the efforts of DRDO, IAF, Defence Public Sector Undertakings, development cum production partners and industry stakeholders for the achievement. He said the successful tests demonstrate the growing maturity of indigenous defence technologies and mark a significant step towards Atmanirbharta in advanced weapons system. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the County Ground, Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership between Heather Knight and Alice Capsey helped England chase down 180 with ease. Alice Capsey was declared player of the match as well as player of the series. India set a target of 181 runs against England. In reply, England scored 184 for 4 in 18.3 overs. Earlier, England won the toss and opted to bowl. Indian women made 180 runs for 5 in 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

सुबह के 5:10 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है भोर सुहानी मेरे यानी पंकज के साथ। और शुरुआत करते हैं इन दो गानों से और पहला गाना ये सुदास की आवाज में फ्रॉम द मूवी सुनैना।

सच मानिए, इस पल पार्क में घूमते हुए ना ये गाना अलग ही सुकून देता है। वैसे भी अभी मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे सुबह हो रही है, रोशनी आसमान में हो चुकी है। लता जी की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये गाना था, आनंद बख्शी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत था। आज 3 जून बुधवार है, यह 2026 का छठा नंबर का ये महीना चल रहा है। मतलब समय को तो मानो जैसे पंख लग गए हों, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है। खैर, भोर सुहानी में मैं पंकज हूँ आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। जैसे जैसे सुबह होगी, गर्मी तेज होती जाएगी, तो खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जो हैं वो पिएं और कोशिश करें कि तेज